आप जयंती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जेंडर इक्विटी मैटर्स सुन रहे थे। पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर शाम के 7 बज रहे हैं। रेडियो हार्मनी पर मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता।

0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। एंड फ्रेंड्स, कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द ब्रॉडकास्ट टीम एट रेडियो हार्मनी। सपोर्ट अस इन ब्रिंगिंग यू योर फेवरेट प्रोग्राम्स। आई एस्पेशली एनकरेज द यूथ टू कम फॉरवर्ड। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन हार्मनी FM2XX@gmail.com। आज 12 अगस्त है दोस्तों। आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कैलाश खेर के गाए कृष्ण भजन से करेंगे।

0: कृष्ण।
1: इस सुंदर कृष्ण भजन को गाया था कैलाश खेर ने और ये भजन लिखा था समीर अंजान ने, संगीत दिया था प्रीणी सिद्धांत माधव ने। दोस्तों, अगस्त के महीने में अब ये तिथियां हैं कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 19 को तुलसीदास जयंती है, 26 का ओणम और 26 को ही ईद ए मिलाद, 28 की रक्षाबंधन। इंटरनेशनल डेज में आज है इंटरनेशनल यूथ डे, 19 को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 21 का इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, 22 को इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, 23 का है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, और इसी तरह आगे और भी इंटरनेशनल डेज हैं जो हम आपको आगामी कार्यक्रम में बताते चलेंगे। आज का हमारा खास कार्यक्रम है फिल्म एक्ट्रेस काजोल देवगन पर। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1974। जन्म का नाम था काजोल मुखर्जी। इन्हें सिर्फ काजोल के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। वे 7 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं। सन 2011 में काजोल को भारत सरकार द्वारा 4वां सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला।

0: ये काली काली आंखें, फिल्म थी बाजीगर और इस फिल्म में काम किया था शाहरुख खान और काजोल ने। इसके गाने वाले थे कुमार शानू और अनु मलिक, संगीत दिया था अनु मलिक ने और बोल लिखे थे देव कोहली ने। तो दोस्तों, तनुजा और शोमू मुखर्जी की बेटी काजोल ने स्कूल में रहते हुए ही बेखुदी 1992 जो बनी थी फिल्म से अभिनय की शुरुआत की। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बाजीगर 1993 और ये दिल लगी 1994 में व्यावसायिक सफलता हासिल की। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रोमांस फिल्में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, उन्होंने गुप्त दी हिडन ट्रूथ 1997, इनमें एक साइकोपैथिक किलर और दुश्मन 1998 में एक एवेंजर का रोल करके भी क्रिटिक्स की तारीफ पाई। फैमिली ड्रामा कभी खुशी कभी गम जो 2001 की फिल्म है, उसमें एक्टिंग करने के बाद जिससे उन्हें तीसरा फिल्मफेयर अवार्ड मिला, काजोल ने फुल टाइम एक्टिंग से ब्रेक लिया और अगले कुछ दशकों में कभी कभी काम किया। उन्होंने रोमांटिक थ्रिलर फना 2006 में जो बनी और ड्रामा माय नेम इज़ खान 2010 की फिल्म में एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर में 2 और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीते। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में कॉमेडी दिलवाले 2015 और पीरियड फिल्म तानहाजी 2020 की फिल्म थी। तब से उन्होंने कई स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिनमें त्रिभंगा 2021, दी ट्रायल 2023 और दो पत्ती 2024 शामिल हैं। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा काजोल एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वे 2008 में रियलिटी शो रॉक एंड रोल फैमिली में टैलेंट जज के तौर पर दिख चुकी हैं और देवगन एंटरटेनमेंट एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड में मैनेजर के पद पर हैं। काजोल की शादी 1999 में एक्टर और फिल्म मेकर अजय देवगन के साथ हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं।
1: You're listening to People Powered Radio 2XFM 98.3, streaming online at 2XFM.org.au.

0: कबूल है।
1: ये लड़का और ये लड़की, हाय अल्लाह, ये था फिल्म कभी खुशी कभी गम से एक गीत, गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और इसे संगीत दिया था जतिन ललित ने, बोल लिखे थे समीर अंजान ने। दोस्तों, काजोल को उनकी नेचुरल एक्टिंग के लिए जाना जाता है। द हिंदू अखबार जो है उसने कहा कि वह अपने सीन को एक्टिंग करके नहीं बताती और ना ही अपने डायलॉग बोलती हैं, वह अपने किरदारों में जान डालकर जी लेती हैं। कई फैमिली ड्रामा में लीड रोल निभाने के बाद काजोल ने गुप्त दी हिडन ट्रूथ, जो 1997 की फिल्म थी, उसमें अपनी एक्टिंग की वर्सेटिलिटी दिखाई, जिसके लिए उन्हें अपने ज़माने की पहली एक्ट्रेस में से एक माना गया जिन्होंने फीमेल एंटी हीरो किरदार निभाए और मेल एक्टर्स से ज़्यादा पॉपुलर हुई। स्क्रीन पर उनके जिंदा दिल और जोशीले नेचर के लिए भी उनकी तारीफ हुई। राजीव मेनन ने काजोल को 1990 के दशक के जॉय दी वीवर को रिप्रेजेंट करने का क्रेडिट दिया, और खालिद मोहम्मद ने उन्हें टैलेंट का एक बड़ा पैकेट बताया। ओपन के अनुसार उनकी सहजता उनकी फिल्मों में एक अनोखी ऊर्जा लाती थी, और करण जौहर ने कहा, मैं एक शूट पर एक्शन कहूँगा और हर बार काजोल के आसपास होने पर सेट पर एक छोटे से परमाणु बम विस्फोट की उम्मीद करूँगा, क्योंकि वह वही थी। उन्होंने हम सभी को चौकन्ना रखा। विद्वान आशीष राजाध्यक्ष ने देखा कि वह ऐसी अभिनेत्री थीं जिसके आसपास एक पटकथा लिखी जा सकती है और एक फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म वितरक जिसके आसपास एक पटकथा लिखी जा सकती है और एक फिल्म बनाई जा सकती है। फिल्म वितरक

اجنبی مجھ کو اتنا بتا, یہ تھا فلم پیار تو ہونا ہی تھا سے فلم, اور اسے گایا تھا آشا بھونسلے اور ادت نارائن نے, بول لکھے تھے سمیر انجان نے اور سنگیت دیا تھا جتن للت نے. मित्रों, अपने समकालीनों में से अधिकांश के विपरीत काजोल का विवाह और मातृत्व के बाद एक सफल करियर रहा है, जिसके लिए उन्हें आदर्श न्यू एज महिला के रूप में जाना जाता था. स्टीरियोटाइप को तोड़ने पर उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में धारणाएं बहुत बदल गई हैं. विवाहित अभिनेत्रियों को फिल्मों में चरित्र भूमिकाएँ निभाने की ज़रूरत नहीं है. फिल्म निर्माता प्रयोग कर रहे हैं और यह वास्तव में हमारे जैसी अभिनेत्रियों के लिए सबसे अच्छा समय है. उनकी शादी के बाद पत्रकारों ने अनुमान लगाया कि यह उनके करियर का अंतिम बिंदु होगा. उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन वे अधिक चयनात्मक हो गईं. इसका कारण योग्य प्रस्तावों की कमी और खुद को ऐसी फिल्मों में देखने की अनिच्छा को बताया, जो बिल्कुल निरर्थक है. अपने आवेगी और जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाने वाली काजोल को टीकाकारों ने एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बताया है. सुकन्या वर्मा ने लिखा, काजोल के बारे में सोचो, भावनाओं के बारे में सोचो, या तो वह तेज तरार है या भावनात्मक रूप से संवेदनशील किस्म की, और कभी कभी वे खुद शुद्ध मजेदार होती हैं. सन 2008 में हिंदुस्तान टाइम्स के लिए उनका साक्षात्कार लेते समय पत्रकार हीरेन कोटवानी ने दिए गए सवालों के जवाब देते समय उनकी स्पष्टवादिता पर ध्यान दिया. इंडिया टुडे ने माना कि उनके बेबाक व्यवहार ने उन्हें फिल्म पुरस्कार जीतने में मदद की है, और आगे टिप्पणी की काजोल में एक

शानदार सहजता है फिल्मी बच्चों को उद्योग के पारंपरिक ज्ञान पर तेजी से पढ़ाया जाता है सफलता की रेखा जिस पर चलने की जरूरत है शायद तनुजा ने इसे कभी नहीं सिखाया शायद काजोल ने कभी सुना नहीं क्योंकि उन्होंने पूर्वानुमान को छोड़ दिया है।

कुछ कुछ होता है ये इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक था और इसे गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने, कंपोजर थे जतिन ललित, बोल लिखे थे समीर अंजान ने। काजोल की अपनी उपस्थिति को बनाए रखने में रुचि की कमी के लिए आलोचना की गई है। गौतम राजाध्यक्ष ने कहा कि वे हेयर स्टाइल और कपड़ों के प्रति उदासीन थीं और अगर उन्हें हर दिन जीन्स, सफ़ेद शर्ट और स्कार्फ पहनने की इजाज़त दी गई तो वे वास्तव में खुश होंगे। पत्रकार कावेरी बॉमजई ने विस्तार से बताया, वे शायद ही कभी आईने में देखती हैं, सेट मॉनिटर पर भी मुश्किल से ही नज़र डालती हैं, जो आमतौर पर हर असुरक्षित अभिनेता की बैसाखी होती है। केवल अत्यधिक दबाव में ही मेकअप करती हैं और अपनी पुरानी फिल्में कभी नहीं देखती। शबाना आजमी और स्मिता पाटिल से उनकी तुलना करते हुए निर्माता महेश भट्ट ने कहा कि काजोल में उनकी तरह सांसारिक कामुकता नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी आंखों में वह अतिरिक्त चमक और एक प्रकार की ऊर्जा है जो वह स्क्रीन पर उत्पन्न करती हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय बनाती हैं। हालांकि फिल्मफेयर ने उन्हें अपरंपरागत सुंदरता का लेबल दिया और कहा कि उन्होंने 90 के दशक में अपने खुद के नियम निर्धारित किए।

जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, ये था फिल्म करण अर्जुन का एक गीत और इसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने और बोल लिखे थे इंदीवर ने। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए एक खास कार्यक्रम पेश किया, वो है फिल्म एक्ट्रेस काजोल पर, जिनका जन्मदिन 5 अगस्त को पड़ता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रात के 8 बजे हैं और मुझे आपसे यहीं विदा लेनी होगी। हम अगले बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर फिर आपके साथ प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि 2XX FM 98.3 पर अगला कार्यक्रम है लैटिनो अमेरिकन आवरा।